नमस्ते शुक्रिया आदाब तुसी सारे सुन रहे हो दिल दी आवाज मैं हां ताडा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खक न्यूयॉर्क न्यूजर्सी दे स्टूडियो तो ताडे नाल प्रोग्राम लेके हाजिर हो गया जी। सो अज दे प्रोग्राम दी शुरुआत करदे आं। अज आपां मोहम्मद सदीक ते बीबा रंजीत कौर होना दे सारे गीत सुनांगे ते उस तो बाद अज खास खास खबरां वल भी जावांगे देखांगे की हो रहा जी। सो जुड़े रहो नाल सुनदे आं जी पहला गीत मोहम्मद सदीक साहब दा।

0: नारे नाले में जाके तुम धोके आका नारे गारे गारे गारे गारे
1: सूर बदल
0: गारे गारे
1: अमक
0: गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर इन्ना आया है
0: यक चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं।

नहीं चतुराई, तुझे सुर की समझ नहीं आई, तूने कोरी घास ही खाई। अरे घोड़ी

जी दोस्तो, गुरु रविदास जी की बाणी वक वक रागां विच दर्ज है, जिवें कि श्री राग दे विच एक शब्द उन्होंने उचारिया है, गौरी राग दे विच पांच शब्द, आसा राग दे विच छे शब्द, गुजरी राग दे विच एक शब्द, सोरठ राग दे विच सत शब्द, तनासरी राग दे विच तीन शब्द, जैतसरी राग दे विच एक शब्द, सूही राग दे विच तीन शब्द, बिलावल राग दे विच दो शब्द, गौंड राग दे विच दो शब्द, रामकली राग दे विच एक शब्द, मारू राग दे विच दो शब्द, केदारा राग दे विच एक शब्द, भैरव राग दे विच एक शब्द, बसंत राग दे विच एक शब्द, ते मलार राग दे विच एक शब्द उन्होंने उचारिया है जी, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज हन। उन्हां दे कुछ प्रसिद्ध शब्द जेड़े है ओ है, तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, तू मैं हां मैं तू हां साडे विच की फर्क है, जिवें कि बेगमपुरा शहर का नाम, बेगमपुरा शहर का नाम है जिथे कोई गम नहीं, मेरी संगत पोच पोच दिन राती, मेरी संगत हमेशा रब दे नाम विच लीन रहिंदी है, संत तुझी तन रंगत प्राण, संत दी भगती नाल ही जीवन सुखी हुंदा है, तुम चंदन हम इरंद बापुरे, तू चंदन है मैं एक छोटा जिहा बूटा हां। जी दोस्तो, साडे नाल दिल्ली तो आराधना सिंह जी जुड़े हन, जो कि 41 दे 41 शब्द उन्होंने गाए हन, उन्होंने याद किते हन, ते असी उन्हां दा ते एक शब्द थानू असी सुनाने हां, जो कि क्योंकि वो साडे नाल लाइव होके गा रहे हन, ते असी उन्हां दा एक रिकॉर्डेड जिहड़ा शब्द है वह थानू सुना रहे हां जी। जी सुनो जी।

0: पूछ दी कि विष्ण पूछ पूछ दी कि विष्ण पूछ पूछ दी कि विष्ण पूछ।
1: हां जी कहंदे हर सो हीरा छड़ के करे आदम की आस, जो इंसान कीमती रब नू छड़ के किसी होर उते आस रखदा है ते नरदोजक जाएंगे सत पाखे रविदास, उस दी जिंदगी नरक है ए गल असल रविदास दसदा है जी। भगत कबीर जी कहंदे हन गुरु ग्रंथ साहिब दे अंग 1377 दे विच, कई फाजल मानदे हन कि श्री गुरु नानक देव जी ते गुरु रविदास जी की मुलाकात हुई है, पर असल जगह ते अरसे बारे तकरार है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु रविदास जी दे 41 वाक 16 रागां विच दर्ज हन। इस तों अलावा रैदास जी की बाणी नाम दी एक हथ लिखत किताब नागरी प्रचारणी सवा कोल मौजूद है। भाषा विभाग पंजाब ने भी इन्हां रचनावां नूं बाणी सतगुरु रविदास जी दे सरलेख अधीन 1984 विच पब्लिश कीता। गुरु ग्रंथ साहिब विच मौजूद सतगुरु रविदास जी दे 40 शब्द ते एक सलोक नूं काबले इतबार दा खिताब हासिल है जी। गुरु ग्रंथ साहिब विच मौजूद सतगुरु रविदास जी दी बाणी दे सफे हन अंग 93, अंग 345 तो 346 तक, अंग 486 तो लैके 487 तक, अंग 525, अंग 657 तो लैके 659 तक, अंग 694, अंग 710, अंग 793 तो लैके 94 तक, अंग 858 तक, अंग 875, अंग 973 तो 974 तक, अंग 1106, अंग 1124, अंग 1167, अंग 1196 ते अंग 1293 दे उते श्री गुरु रविदास जी दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है जी। जी कहिंदे हुण असीं अगर असीं सफर दी करिए, गुरु रविदास जी ने दक्षिणी एशिया द्वारे 6 सफर कीते उन्होंने, ते इस तों पहला सफर सीगा गुरु रविदास जी ने ते परमेश्वर कबीर जी ने इकट्ठिया बनारस तो पहली यात्रा शुरू कीती। इन्हां दोनों दे नाल सतगुरु रविदास जी दे पुत्र विजय दास जी हम सफर सन। इह इलाकियां विच उन्हां दे सफर दे विच शामिल हन नागपुर, भागलपुर, माधोपुर, चंदोसी, बीजापुर, राणीपुरी, नारायणगढ़, भोपाल, बहावलपुर, कोटा, झांसी, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, अमरकोट, अयोध्या, हैदराबाद, काठियावाड़, मुंबई, कराची, जैसलमेर, चित्तौड़, कोहाट, खैबर दरा, जलालाबाद। अंग 1196 ते अंग 1293 दे उते श्री गुरु रविदास जी दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है जी। जी कहिंदे हुण असीं अगर असीं सफर दी करिए, गुरु रविदास जी ने दक्षिणी एशिया द्वारे 6 सफर कीते उन्होंने, ते इस तों पहला सफर सीगा गुरु रविदास जी ने ते परमेश्वर कबीर जी ने इकट्ठिया बनारस तों पहली यात्रा शुरू कीती। इन्हां दोनों दे नाल सतगुरु रविदास जी दे पुत्र विजय दास जी हम सफर सन। इह इलाकियां विच उन्हां दे सफर दे विच शामिल हन नागपुर, भागलपुर, माधोपुर, चंदोसी, बीजापुर, राणीपुरी, नारायणगढ़, भोपाल, बहावलपुर, कोटा, झांसी, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, अमरकोट, अयोध्या, हैदराबाद, काठियावाड़, मुंबई, कराची, जैसलमेर, चित्तौड़, कोहाट, खैबर दरा, जलालाबाद, श्रीनगर, डलहौजी, गोरखपुर।

0: भोपाल, बहावलपुर, कोटा, झांसी, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, अमरकोट, अयोध्या, हैदराबाद, काठियावाड़, मुंबई, कराची, जैसलमेर, चित्तौड़, कोहाट, खैबर दरा, जलालाबाद, श्रीनगर, डलहौजी, गोरखपुर। दूजा सफर दे विच उन्होंने जिहड़ा सफर कीता है गोरखपुर, प्रतापगढ़ ते शाहजहांपुर की यात्रा की। तीजे सफर दे विच गुरु रविदास जी ने हिमाचल प्रदेश जाके लोगों नूं इलाही सुनेहा दिता। चौथे सफर दे दौरान हरिद्वार, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, त्रिवेणी ते होर जगह जाके संत साधुआं, भगतां, नाथां, सिद्धां, अमीरां, गरीबां दे नाल विहार विचार सांझे कीते। पांचवां सफर गुरु रविदास जी गाजीपुर दे राजा रूप प्रताप सिंह, जिन्हों के चंद्र प्रताप दे नाल नाल भी जाने जांदा है, दे सद्दे ते अपने मुरीदां नाल गाजीपुर पहुंचे। छेवां सफर सतगुरु रविदास जी पंजाब दे इन्हां इलाकियां नूं गए, लुधियाणा राही चक पिंड चक हकीम, नेड़े फगवाड़ा, जलंधर, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला ते मुल्तान। हां जी दोस्तो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं जगवंत खेड़ा, तुहाडा होस्ट ते तुहाडा दोस्त, अमरीका दे स्टेट नॉर्थ कैरोलाइना दे शहर डुरम तो। साडे नाल जुड़े हन जी दिल्ली तो आराधना सिंह जी, जो कि दिल्ली वाले नाल दे नाल मशहूर हन ते पिछले 50 सालां तो गायकी दे खेत्र विच निरंतर जमे हुए हन जी। कोई चक्कड़, कोई हनेरी, कोई फाइनैंशियल रुकावट उन्हां नूं नहीं हिला सकी। बस कुछ एक समा सीगा जदों अचनचेत उन्हां दे जीवन साथी राकेश जी उन्हां नूं छड्ड के चले गए सन। जिंदगी दी बेड़ी थोड़ी डोली, मगर फिर दोबारा तो अगले सफर दे लई तैयार हन जी। बहुत ही मन दे विच एक इरादा लैके चल रहे हन कि मैं गुरु रविदास जी दे सारे शब्द रिकॉर्ड करके इस दुनिया तो रुखसत होना चाहुंदी हां जी, ते इहदे लई तुहाडी सहायता दी जरूरत है जी। ते एक लास्ट उन्हां दे कोलों गुरु रविदास जी दा एक शब्द सुनदे हां जी। इह भगती हुंदी है जिंदगी दे विच, आके तुसीं किसे वैसे भी देखो, जदों तुसीं नोट कीता होएगा, जदों मैं गुरबाणी दा कोई भी लाइन पढ़दा हां तां मेरी जबान एकदम थरथरा जांदी है, क्योंकि गुरबाणी याद करना, उसनूं पढ़ना वाकई ही उन्हां इंसानां दे हिस्से हुंदी है जो कि वाकई ही जिन्हां दे उत्ते गुरु जी दी मेहर हुंदी है। तां इन्हां ने तां पूरे दे पूरे शब्द जिहड़े हन उह कंठ कीते होए हन। कंठ करके बोलना अलग गल है, कंठ करके गाणा उह वी लय दे विच इक बहुत ही वधिया कारगुजारी हुंदी है जी। असीं आराधना सिंह दिल्ली वाले तो एक इस प्रोग्राम का आखिरी शब्द सुनांगे जी, जो कि फिर अपने जो मुखारबिंद तो सुनांगे जी। आराधना जी, आखिरी शब्द सरवण करो जी।
1: जी सर, एक छोटा शब्द है, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी के काफी बड़े बड़े शब्द ने, जब मैं इन्हें रिकॉर्ड करूंगी तो एक शब्द जरा 12 मिनट का, 15 मिनट का ऐसा होगा सर
0: जी।
1: लेकिन उच्च पूरे 40 शब्दों च 2 शब्द बड़े छोटे छोटे ने, और ए गुरु महाराज जी बैठे हुए ने, अपना काम कर रहे ने जो करते सन, है ना। मैं तो वो शब्द भी नहीं यूज कर सकती, क्योंकि मैं जिस अदब और जिस आजादी नाल उन्हां नूं मंदी हां, उन्हां लई मैं कोई ऐसा शब्द नहीं वरतना चाहती जो मेरी जुबान तो निकले। और वो बैठे देख रहे ने कि बाजीगर हुंदे आ ना, जिहड़े बाजीगर बाजी पाउंदे ने, अज भी फगवाड़े वगैरह जाओ ते वो बाजियां पाउंदे आ, छोटे छोटे बच्चे हुंदे उन्हां दे। ते गुरु महाराज जी ने देखिया और फिर उन्हां ने ये शब्द का उच्चारण किया कि वो दृश्य देख रहे ने और फिर ये शब्द उच्चारण कर रहे ने। सो यही शब्द मेरे नाल तो कुछ गुरुआं दी इस तरह की कृपा है कि जी मैं जी जो शब्द गौनी है तो मैनु पूरा दृश्य महसूस भी हुंदा है और उदा एहसास हुंदा और दिसदा भी है कि इदा होया होना एक एक शब्द नाल। सो आओ आपां इह शब्द सरवण करिए। छोटा जिहा शब्द है लेकिन बहुत अति सुंदर है।

माटी को उतरा कैसी नचत है, माटी को उतरा कैसी नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरियो फिरत है, देखे देखे सुने बोले दौरियो फिरत है, माटी को उतरा कैसी नचत है।

बाजीगर प्यो मोहे रीत बन आई माटी को उतरा कैसे नचत है माटी को उतरा कैसे नचत है।

0: है रणवीर सिंह, बहुत नाज है ना हिंदुस्तान को तुम्हारी सिख रेजिमेंट पर। अरे तुमने कड़े पहने तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी। देख देख तेरे सीने पर पांव रखकर कश्मीर की सरजमीं पर हम हमारा झंडा लहराएंगे।
1: ओ खुशिया, तू नहीं जानता सिखानों के कच कड़ा कृपान गंगा सिखों का निशान। ढूंढते रह जाओगे नक्शे में पाकिस्तान।

खुशियां तू नहीं जानता सिक्का लो के कच कड़ा कृपान गंगा सिखों का निशान ढूंढते रह जाओगे नक्शे में पाकिस्तान।

वाजीवा, बहुत खूबसूरत गाना, वंडरफुल डांस। ते हीरोइन का नाम पता नहीं की, पता नहीं लगा, लेकिन वंडरफुल डांस सी जी, खूबसूरत गाना। ते मिसिस कपूर जी, उम्मीद है तुसी भी खुश हो गए होगे, साडियां गुड विशेस तुहाडे नाल। लाओ भाई दोस्तों, भाई अज गामे पहलवान की गलबात करांगे तुहाडे नाल। दुनिया दे मन्ने परमन्ने पहलवाना विचों

0: घोड़ा चतुरा एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

0: पहले तोड़ दी शराब दी पैने नी तू साथ ले जने के मुल लेने
1: गबरू नकारे
0: मिले आए तेरे मारे
1: गबरू नकारे
0: मिले आए तेरे मारे।

0: डांग उत्ते डेरा
1: जट कलाई बथेरा
0: तेरा डांग उत्ते डेरा
1: जट कलाई बथेरा
0: किथो लाएगा मराड़ा वाले मान के हजेरा
1: मीना संग जट तो तू कुछ मंग।